0: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at Three Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton Three Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
1: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
2: Lester Miller is back.
3: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
2: Lember Hussein Puri. Get ready for full Punjabi energy, Bhangra beats and live Mela vibes.
3: Hosted by the team of Lyco Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
2: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
3: Arts Council England.
4: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स सबके लिए कुछ न कुछ है 62 टू 64 बेलग्रेव रोड LE4 5AS पर चाहे डाइन इन करो टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ कॉल कीजिए 0116-332-5100 एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है अब लेस्टर में जहाँ हर बाइट है एग Extraordinary.
5: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: ये है लाइका रेडियो। साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
1: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है।
2: ऑर्डर ऑनलाइन एट pujasweets.com। फ्रॉम बर्फी, लड्डूज, गुलाब जामुन टू समोसा एंड गाठिया, फ्रॉम केटरिंग स्टार्टर्स टू डिजर्ट, पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज।
3: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 और विजिट मेल्टन रोड LE4 5EA।
2: पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज।
0: दिस इज लाइका रेडियो, पार्ट ऑफ द लाइका रेडियो नेटवर्क। This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK, sounding good throughout the night, with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

Speaker Radio. अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@lykamedia.co.uk. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भुआइए। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ताहू मैं कहे न कोए। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाइया चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे

मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले जे

मूर्ख अंधगोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई वलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार।

भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

जोर, जोर ना जीवन मरण है जोर, जोर ना राजमाल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती छित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नान गया जापै जाए, धर्म ख

0: क्या खूबसूरत गाना है लता जी और किशोर दा की आवाजों में, और उससे पहले आपने मोहम्मद रफी साहब की आवाज सुनी। लीजिए तो बैक टू बैक गीतों के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। आज संडे का दिन है, 26 जुलाई है, और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद रेडियो जो है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और ऋतु शर्मा आपके साथ है अब से लेकर दोपहर के पूरे 1 बजे तक आपका साथ देने के लिए। और आपको बताती चलूं कि ऋतु शर्मा के साथ साथ इस समय हमारे साथ रवि शर्मा जी भी हैं। और रवि शर्मा जी कहां पर हैं और हमारे साथ क्या शेयर करने जा रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। हेलो रवि जी, हाउ आर यू?
1: हेलो हेलो ऋतु, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू फ्रॉम तीर्थ स्थान कह सकते हैं आप इसे, बहुत बड़ा, जहां पर राजा और रंक जो है सब आ चुके हैं माता देखने प्रणाम करने के लिए। और इस समय यहाँ से एक बहुत खूबसूरत यात्रा शुरू होने लगी है। आप जानती हैं कि दिवाली स्टोरी नाम से जो बहुत बड़ा फंक्शन सितंबर में वैमली हरीना में हो रहा है, ओबो हरीना वैमली में, तो उसके पूर्व दिवाली स्टोरी की लॉन्च यहाँ से हो रही है। ये स्वामी नारायण स्कूल है, बिल्कुल स्वामी नारायण मंदिर के सामने, और यहाँ पर भगवान श्री राम, उनका परिवार और दूसरे कलाकार जो है वो बड़े शानदार तरीके से शुरू करने वाले हैं। और कुछ संत भी यहाँ पहुंचे हुए हैं इस बस को कोच में, जिसमें यात्रा करेंगे। आज पूरे लंदन को हम भगवान के दर्शन कराएंगे। जहां जहां से कोच गुजरेगी, वो एक तो कोच पूरी जो है वो राममय बनाई गई है, उस पर सुंदर चित्रकारी है राम सीता लक्ष्मण और हनुमान जी की। और इसके साथ ही जो कलाकार जो परफॉर्म करेंगे उनकी थोड़ी सी झलक आज लोग देख सकेंगे। ट्रफलगर स्क्वायर में ये पहुंचेगी, ये लंदन आई पर पहुंचेगी कोच, और ये इस तरह से बकिंगम पैलेस और कई जगहों पर ये कलाकार उतर के परफॉर्म करेंगे। बट रवानगी से पहले, इससे पहले कि बस की यात्रा शुरू हो, सारे कलाकार उस पर जो है सवार हों, मैं परम पूज्य परम आदरणीय अर्चनीय वंदनीय स्वामी सत्यव्रत जी यहाँ आए हैं बस को रवानगी से पहले पूजा करने और आशीर्वाद देने के लिए। तो मैं प्रणाम करता हूँ स्वामी जी, नमस्कार। स्वामी जी नमस्कार, क्या कहेंगे आप इस बस की रवानगी पर? जय स्वामी नारायण। यू वॉन्ट टू गिव अ मैसेज? It's going on the radio, but you, Hindi, English, you can use any language.
2: No, we are fortunate here at the BIPS Swamiland Temple, Nisan Temple. The special bus has come and we'll be performing the puja of this bus. Once the puja is finished, the actors will be performing here as well. And then the whole bus will be going on a tour of the whole the city of London. So we are blessed that this occasion is taking place here in the Nisan Temple. And obviously we have the blessings of Bhagwan Swaminarayan, Akshabham Gunatthanan Swami, Bhagatji Maharaj, Sashti Ji Maharaj, Yogi Ji Maharaj, Pramukh Sai Maharaj and Guru Hari Mohan Sai Maharaj.
0: लीजिए रवि जी से हमारा संपर्क टूट गया है, हम कोशिश करते हैं कि उनसे हमारी बात फिर से हो पाए, क्योंकि जान नहीं पाए। लगाते हैं उन्हें फोन, देखते हैं रवि जी का फोन फिर से जुड़ पाता है या नहीं, और नहीं जुड़ता है तो थोड़ी देर बाद उनसे हमारी आपसे फिर से बात करवाएंगे। लगता है रवि शर्मा जी कहीं बिजी हो गए हैं, उनका फोन कहीं बिजी हो गया है, तो आपसे हम उनकी दोबारा बात करवाएंगे।
3: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज ये 1 pound के बदले में आपको मिल जाएंगे 128.3 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी लागू रहेंगे।
3: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: Leicester, tayar ho jao ek yaadgar Bollywood night ke liye. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Amantrika, or female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September. September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM. Show starts 7 PM. Tickets book kare demontforthall.co.uk
5: ya Mumbai Sandwich Station on 0116 332 0262 or call Mr. B on 0786 0280 655. Exclusive radio partner, Laika Radio.
6: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybon Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call Citybon Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.

0: खूबसूरत धुन बनाई है नदीम श्रवण ने और उस पर अनुराधा पौडवाल की आवाज लगा रही है इस गाने में चार चार।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और इस गाने को हमने लिया था अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म साजन से, जिसे आप सभी ने पसंद किया और ये गाना मेरी ओर से आप सबके लिए था। ढेरों मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं, लेकिन सबसे पहले आज का विचार शामिल करते हैं प्रोग्राम में, जो हमेशा की तरह हमारे बहुत ही प्यारे लिस्टनर हैं विजय गुडूरी जी। आपने शेयर किया है और आपने लिखा है कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख जाता है, वही अपने जीवन को बेहतर बनाना भी सीख जाता है। सही कहा है किसी ने, अगर इंसान दूसरों की गलती से सीख जाए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आती, वो जब खुद गलती करते हैं तब सीखते हैं। लेकिन चाहे आप दूसरों की गलतियों से सीखें या अपनी गलतियों से सीखें, जरूरी ये है कि आप सीखें और उन गलतियों को बार बार ना करें। यही था आज का विचार। थैंक यू विजय जी, और आपके साथ ढेरों मैसेजेस मुझे मिले हैं और इसमें कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं भी हमारे साथ शेयर की हैं, और किन्होंने शेयर की है उनके बारे में जरूर बात करूंगी, लेकिन पहले एक और खूबसूरत गाना हो जाए।
1: ये है लाइका रेडियो। टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: चाहती है।
1: जी हाँ, आशा भोसले की आवाज में था ये मीठा सा गाना और आज ऐसे ही गाने प्रोग्राम में सुनवाने का इरादा लेकर आई हूँ।
2: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: तो संडे का दिन है, आई एम श्योर आपने सारी भागा दौड़ी कल सैटरडे के दिन कर ली होगी और क्योंकि कल मंडे से काम पर जाना है तो आप रिलैक्स होकर बैठे होंगे। और आज मौसम भी कुछ बदला है, थोड़े से बादल आ गए हैं, हल्की फुल्की बारिश भी आज हो सकती है, तो कुल मिलाकर बड़ा ही अच्छा सा एक माहौल है। तो सोच रही हूँ ऐसे ही गीतों को कंटिन्यू रखूँ। इनफैक्ट एक ऐसा ही गाना मैं आपको सुनवाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपके जो ढेरों मैसेजेस मिले हैं उन पर एक नजर डाल लेती हूँ। गुरुदेव गांजा कहते हैं कि ऋतु लोग सॉरी क्यों नहीं कहते, सम पीपल नेवर से सॉरी। गुरुदेव ये तो मुझे भी नहीं पता, मुझे समझ नहीं आता कि सॉरी क्यों नहीं कहते हैं। क्या सॉरी कह देंगे तो वो घिस जाएंगे, वो छोटे हो जाएंगे, उनका बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा या घर में चोरी डकैती हो जाएगी, आई डोंट नो। इतना छोटा सा शब्द है सॉरी, कहने में उनको बड़ी तकलीफ होती है। और आपकी ही समस्या नहीं, मेरी भी है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जो कुछ भी कर लेंगे लेकिन सॉरी बोलने में उन्हें लगेगा शायद उनकी शान कम हो जाएगी। सही, आई डोंट नो क्या रीजन है, मुझे पता चला तो मैं आपको बताऊंगी और अगर आपको पता चला तो मुझे बता देना, ठीक है। स्वागत है आपका इस शो में। थैंक यू निर्मला जी, थैंक यू रोशनी, थैंक यू अलका जी, आप हमें सुन रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एड्रेस चाहती हैं जी, हम बताएंगे आपको ज़रूर। शो का रंजीत रजवाड़ा का शो हो रहा है, बिल्कुल बताएंगे आपको थोड़ी देर में। गीता एंड हर्षा जोशी जी, महेंद्र बजारिया जी, थैंक यू एंड शबीर जी, आपने हमारे साथ चार लाइन

0: ने शेयर की और कहते हैं कि टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है, बीता हुआ पल यादें दे जाता है, हर शख्स को अपना का अपना अंदाज होता है, हर शख्स का अपना एक अंदाज होता है, कोई जिंदगी में प्यार तो कोई प्यार में जिंदगी दे जाता है। ब्यूटिफुल, थैंक यू। और कभी कभी आप आते हैं और खूबसूरत कविता हमारे साथ लाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नरेंद्र जी, आपने भी दोस्तों के नाम चार लाइनें शेयर की है जिन्हें बाद में पढ़ूंगी। दिनेश पोपट जी, महेंद्र बजारिया जी, हिमांशु जी, दिव्या जी, संध्या जी, भानु जी, हरीश खत्री जी, अनिल जी, सुरजीत जी, मनीषा शाह, आज आपके हस्बैंड अपनी हैप्पी वाली बर्थडे मना रहे हैं और आप चाहती हैं कि उनके लिए एक गाना बजा दूँ, और आपने गाना भी बताया है, लेकिन जो गाना आपने बताया वो आप ही गा दो ना, कितना प्यारा गाना है। मैं आपके लिए दूसरा गीत लगवाती हूँ, इनफैक्ट जो अगला गाना है ना, मनीषा जी के हस्बैंड जी के लिए जाता है।
1: ये है Lyca Radio, across the Lyca Radio network, this is Ritu Sharma।

0: लीजिए किशोर कुमार की आवाज में ये गाना मनीषा शाह जी के हस्बैंड जी जो आज अपनी बर्थडे मना रहे हैं उनको डेडिकेट करते हैं। और आपने लिखा है कि रितु हाउ आर यू, आपने हमारे राम शो देखा, आपको बहुत अच्छा लगा। और आपने ये भी लिखा है कि लास्ट में रावण जो लक्ष्मण को सीख देते हैं वो लाइफ में सीखना समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, वो बहुत ही खूबसूरती से पर्दे पर दिखाया गया था और वो बहुत ही सुंदर लाइंस थी जो आशुतोष राणा ने एज ए रावण बोली थी। और आशुतोष राणा इतनी अच्छी बातें करते हैं, इतनी अच्छी तरह से सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि जब मैंने उन्हें इंटरव्यू किया तो हर बात को उन्होंने इतनी खूबसूरती से बताया। और क्या हिंदी बोलते हैं, मतलब उनसे बात करके मुझे मज़ा ही आ गया। अगर आप उस इंटरव्यू को सुनना चाहते हैं तो वो अवेलेबल है हमारे लाइका गोल्ड के फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर भी है, आप सुन सकते हैं। और मैं उसको कई बार सुनती हूँ और मुझे लगता है कि यस, आई एम सो लकी कि मुझे उनसे बात करने का मौका मिला। और शो तो कमाल का ही था और प्रॉमिस तो करके गए हैं कि अगली साल फिर से आएंगे। अब देखते हैं कुछ नया लाते हैं या फिर से हमारे राम एक बार होता है, क्योंकि बहुत सारे साथी मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चला ये सब कैसे हो गया, हम शो देख ही नहीं पाए। तो भाई मैं यही कहूंगी कि आप हमारा साथ देते रहिए, हम आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन बताते रहते हैं ताकि आपसे कुछ मिस ना हो जाए और फिर आप हमसे ये ना कहें कि अरे हमें तो पता ही नहीं चला।
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: और हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं तो Southall Travel को फोन कीजिए, दुबई के लिए टिकट्स बुक कीजिए 02085748410 पर। इट ऑल प्रोटेक्टेड है सब कुछ।
1: Holiday break.

0: Now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
1: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं. एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है. शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स. दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स.
4: Lester Miller is back.
5: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
4: Shin DCS. Expect classic vibes, live energy and a proper celebration at the Abbey Park.
5: Hosted by the team of Lyco Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
4: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
5: Arts Council England.
6: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
7: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
6: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
8: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think, don't let your speed creep.
9: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758-580-18. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
10: This is the Lyco Radio Network, broadcasting across the UK. The Ritu Sharma Show, featuring classics non-stop with Ritu Sharma on Lyco Radio.

0: बप्पी दा ने ये बिल्कुल अमर धुन बनाई है और हमारी मालती जी का कहना है कि क्या ब्यूटीफुल गाना है। बिल्कुल सही कहा आपने, आप हमारा साथ दे रही हैं, स्वागत है आपका इस शो में मालती जी। और उससे पहले गीत गाता चल जसपाल सिंह की आवाज में। दोनों गीतों के साथ प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर शुरू हुआ है और आप सब साथ दे रहे हैं, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज की हमारी जोड़ी नंबर वन है, बॉलीवुड के ही में धर्मेंद्र और आशा पारेख की जोड़ी। दो गाने सुनवाऊंगी, इनफैक्ट अभी बस शुरू करने वाली हूँ आज की जोड़ी नंबर वन का सिलसिला। लेकिन उससे पहले थैंक यू निर्मला जी आपके मैसेज के लिए। संध्या भावसर थैंक यू कहती है, ओ लाइका वाली ऋतु, ओ गाड़ी वाले गाड़ी, धीरे हाक रे, मेरे नाम कर दो ये गाना। चलिए हमने आपके नाम कर दिया। आप भी क्या याद रखेंगी। वीरेंद्र चौधरी जी थैंक यू, आपने याद दिलाया है कि आज कारगिल विजय दिवस है और आप 2012 में उस जगह पर भी गए थे अपनी पत्नी के साथ, लद्दाख गए थे जहां पर टेम्परेचर सर्दियों में -60 डिग्रीज का होता है, और आपने शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। क्या बात है, हम सभी भारतवासियों को आप पर गर्व है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल, जिन्होंने देश के लिए जान गंवाई है उन पर तो हमें हमेशा गर्व होता है और होना भी चाहिए। सो थैंक यू विजय वीरेंद्र चौधरी जी साथ देने के लिए। अमिता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ चुकी हैं। और राजकुमार जी सभी को रविवार की प्यार भरी राम राम भिजवा रहे हैं, हमारी ओर से आपको भी राम राम। थैंक यू मानो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नरेंद्र पांचाल जी साथ दे रहे हैं, हिमांशु पटेल जी, मिसेस पेके चियांग, राजीव पटेल जी, दिनेश सोरी, दिनेश पोपट जी, जैस्मीन, रोशनी, संतोष जी, गीता एंड हर्षद जोशी जी, थैंक यू सो सो मच। आप सभी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं तो बस जुड़ते रहिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज £1 आपको देगा 128.3 भारतीय रुपए। और हमेशा की तरह याद रखिए, ये ट्रांसफर करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और अब शुरू करते हैं आज के जोड़ी नंबर वन का सिलसिला। और जरा गैस करके बताइए कि पहला गाना कौन सा होगा धर्मेंद्र और आशा पारेख का। देखती हूँ कौन सही बता पाता। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी सही गैस कर पाएगा। देखते हैं, कोशिश कीजिए। गाना बजने वाला है अब से बस थोड़ी ही देर में।
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. Leica Radio.
2: List up, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, $7.49. Leela Medium Atta 10 kg, just $3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, $24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, $10.99. And Falcon Paneer Box, $8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for $1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for $3.99. Mido Yogurt 10 kg, $8.99. Karela or Long Dudi, $2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE1 2JU, and 2A Rollout Sale, Leicester, LE5 4UN.
3: London, are you ready? Raghavens presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
4: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiya.
3: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ova Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
6: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
5: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
6: गारंटेड
5: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
6: फोन 0208574 8410।
5: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungalow and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist.
8: Be sure to catch the show across the Midlands, the Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July, and at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October.
7: Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.
9: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.

0: शंकर जयकिशन के म्यूजिक पर आशा भोसले की आवाज में शिकार फिल्म से था ये गाना, जो धर्मेंद्र और आशा पारीख की एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत फिल्म थी। और मैंने आपसे पूछा था कि बताइए जरा जोड़ी नंबर वन में आज मैं कौन सा गाना पहले बजाऊंगी, तो आप में से ज्यादातर ने कहा था साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे। और ये गाना मैं अक्सर बजाती हूँ, इसलिए आज मैंने दूसरा गाना चुना था। वो गाना भी बहुत खूबसूरत है, किसी और दिन सुनवाऊंगी, लेकिन इस गाने के पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। कि ये गाना दरअसल म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन पहले लता जी से गवाना चाहते थे, और जब लता जी को इस गाने के बोल पता चले कि पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, इस गाने में लता जी को लगा कि कुछ वल्गैरिटी है। उन्होंने कहा कि आप इस गाने के बोल चेंज करो तभी मैं गाऊंगी। तो शंकर जयकिशन बोले गाना तो बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई वल्गैरिटी है नहीं। लेकिन लता जी ने कहा नहीं है, मुझे लग रही है मैं ये गाना नहीं गाऊंगी, और लता जी नहीं मानी। तब फिर शंकर जयकिशन ने आशा जी से ये गाना गवाया, और देखिए आशा जी ने इस गाने को क्या ब्यूटीफुली गाया कि इस गाने के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला। तो सोचा क्यों ना आज की जोड़ी नंबर वन में इस अवार्ड विनिंग गाने को बजाया जाए, आप सबको सुनवाया जाए, और आप सबने इसे एंजॉय भी किया। सो थैंक यू। लेकिन हमारी जो संतोष जी हैं, इन्होंने दूसरा गाना सही पहचान लिया है कि ये कौन सा होने वाला है। तो संतोष जी बिल्कुल सही पहचाना, यानी कि आप मुझे अब समझ गई हो। चलिए, बहुत सारे मैसेजेस आपके मिले हैं, कई सारे साथियों ने साथ दिया है, और ज्यादातर का कहना है कि मेरा गांव मेरा देश। तो आज मैंने मेरा गांव मेरा देश को थोड़ा आराम दे दिया है। चलिए सुनवाती हूँ आज की जोड़ी का दूसरा गाना।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: ये गाने ऐसे हैं कि आप इन्हें कितनी भी बार सुन लीजिए, कभी भी ये मन से दिल से नहीं उतरते। जब भी इनको सुनते हैं उतना ही ये गाना मजा देते हैं। आज के दो छोड़ी नंबर वन के गाने मैंने आपको सुनवाए, आपने पसंद किए हैं। मोहम्मद अयूब चौहान कहते हैं कि ऋतु आपने मेरा फेवरेट गाना बजाया, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ। ये गाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है सुनने में, गा नहीं सकती। थैंक यू साथ देने के लिए। और वसंती जी एडमिंटन में आप हमें सुन रही हैं और कहती हैं आज मेरे भाई का 70th बर्थडे है मॉरिशस में, तो चलिए वसंती जी के भाई को हैप्पी बर्थडे कह देते हैं। उसके अलावा अमिता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। थैंक यू महेंद्र बजारिया जी, शर्फून आपका साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू। थैंक यू हंसा जी, थैंक यू गुरुदेव गांजा, थैंक यू फरजाना, थैंक यू ज्योति गिरी शाह जी, भानु जी, थैंक यू रुखसाना अफसल आप हमें सुन रही हैं, थैंक यू शेखर जी, रितेश जी, थैंक यू फरीदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के मैसेजेस के लिए। और ये मैसेजेस का सिलसिला चलता जा रहा है, तो इसे चलने दीजिए, रोकिए मत। लेकिन अगला गीत सुनाने से पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ, और मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो ये है कि लाइका रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स फॉर दिवाली स्टोरी द म्यूजिकल। रॉयल एल्बर्ट हॉल में सोल्ड आउट इवेंट के बाद अब ये होने जा रहा है आप सभी के लिए एट ओवो अरीना वैमली में ऑन 27th September। स्टूडेंट्स के लिए एक प्री शो होगा शाम को 5 बजे से लेके 5:45 बजे तक, और मेन शो होगा शाम को 6:15 से 9:30 तक। सनातन इवेंट्स के फाउंडर नितिन पालन MBE द्वारा निर्मित और बॉलीवुड डांस स्कूल टीम की कोरियोग्राफी से सजे इस इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाली दिवाली स्टोरी को 7 स्पेशल गानों के साउंड ट्रैक और एक पूरी इंटरनेशनल आर्टिस्ट की टीम के साथ स्टेज पर जीवंत किया जाएगा। जी हाँ, टिकट्स बुक कराने के लिए आप विजिट कीजिए www.diwalistory.com पर।
1: This is Ritu Sharma.
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
1: Like Extra Podcast Update।
0: तो लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ गया है जिसका टाइटल है इन्वेंशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और इसे आप सुन सकते हैं लाइका

0: एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एमेजोन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर.
1: Mike Extra is here. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is Leica Radio.
2: Mr. Miller is back.
3: And the stage is about to explode. Confirm.

0: यस कोयल सी तेरी बोली माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की सुपरहिट फिल्म बेटा से लिया था ये गाना, जिसमें म्यूजिक था आनंद मिलिंद का, जो एक जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं 90s के दौर के। और आपने सुना ही होगा कि उदित नारायण की आवाज थी इस गाने में, और उदित नारायण ने ऐसे अनेकों गाने गाए हैं और वो लंदन भी आ रहे हैं बहुत जल्द परफॉर्म करने के लिए अपने बेटे आदित्य नारायण के साथ। पिछली बार जब यहाँ आए थे तो मैंने उन्हें सुना था और वो भी इतना सुरीला गाते हैं कि समझ में नहीं आता कि ओरिजिनल रिकॉर्डिंग चल रही है या लाइव परफॉर्मेंस हो रहा है। बहुत खूबसूरत आवाज़ है और उदित जी मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि उनकी आवाज़ अलग है, यूनिक है, किसी से मिलती जुलती नहीं है। और हंस के मुस्कुरा के जो गीत गाते हैं, हर गीत में चार चांद लग जाता है, और इसलिए उनके गाने मुझे बेहद पसंद है। बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं उनके शो में उन्हें लाइव परफॉर्म करते हुए देखने के लिए, क्योंकि पहले भी देख चुकी हूँ, उनसे मिल भी चुकी हूँ, लेकिन अब दोबारा उन्हें देखने का मौका मिले। और जब आपके फेवरेट सिंगर आपके सामने गाएं तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और यस, उदित नारायण लंदन में परफॉर्म करने आ रहे हैं और हम सबको मौका मिलेगा उन्हें लाइव सुनने का।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज £1 आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 370 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LEICA Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LEICA Radio.
0: So gold rate is 97.9 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.
3: Yeah.
4: Like our radio.
3: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend Live in Concert, featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika, और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
5: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Burfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same burfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
9: Citybond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
10: Discover Kailash Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
9: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
10: Also explore 2026 cruises
9: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
11: We'll be right back.

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी, कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें, क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत, अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: मिस्टर नटवरलाल फिल्म से था ये गाना और उससे पहले एक काला पत्थर फिल्म का गीत आपने सुना। और इन दोनों गीतों के साथ बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कहते हैं कि हमें ये दोनों गाने बहुत पसंद हैं। रोशनी जी, मिसेस पे के चियांग, भारती जी, बेल्जियम से प्रीति जी और हमारी आंटी जी। ऑफकोर्स अमिताभ बच्चन का गाना बजे और आंटी जी का मैसेज ना आए, ऐसा होता नहीं है अक्सर। तो चलिए आप सभी के नाम पर करती हूँ ये गाने जिन्होंने पसंद किया है। और ये है प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस शो में जिसे आप सुनते हैं एवरी वीकेंड सैटरडे संडे 10 से 1 और मुझे कहते हैं ऋतु शर्मा, आपका साथ देने के लिए हाजिर हो जाती हूँ। और देखिए पता ही नहीं चला हम कब इस लास्ट वाले आवर में एंटर हो गए। अब बस अब तो इस वाले आवर में आपको मैं कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक सुनवाऊंगी और होगा हमारा ट्रिवर्स गेम भी और साथ ही साथ आर्टिस्ट ऑफ द वीक का गीत भी बजेगा जो अब से बस थोड़ी ही देर में बजने वाला है क्योंकि इस बार की हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक है हेमा मालिनी। लेकिन उससे पहले शुरू कर देते हैं आज के ट्रिवर्स गेम की। आपको पता ही है कि ये जो तीन वर्ड्स होते हैं ये मैं बॉलीवुड के एक गाने से लेती हूँ और आपको पहचानना होता है कि गाना कौन सा है। तो आज के जो तीन वर्ड्स हैं, पहला वर्ड है दीवाना, दूसरा है बेगाना और तीसरा है अपना। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें हैं। 1969 में आई थी ये फिल्म और इसमें म्यूजिक है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कौन सा गाना हो सकता है, बहुत पॉपुलर गीत है। आई रिपीट वंस अगेन, दीवाना, दूसरा वर्ड है बेगाना और तीसरा वर्ड है अपना। किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजें हैं, 1969 की फिल्म है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है। अगर आपको पता चल गया है तो अपना मैसेज भिजवाइए जल्दी से हमारे इस नंबर पर। और ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये हमारा रेगुलर थ्री वर्ड गेम है जिसे हम हर वीकेंड यानी कि मेरे अपने शो में लास्ट वाले आवर में खेलते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए कौन सा है ये गाना।
1: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404 793 719. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 128.3 भारतीय रुपए। और याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions bhi apply hongi.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Ye hai Leica Radio.
2: Leica Radio. Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend Live in Concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Amantrika और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
3: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: दीवानंद और हेमा मालिनी पर पिक्चराइज था ये गाना, और ये गाना था हमारे आज की आर्टिस्ट ऑफ द वीक का गाना, जिसे आपने सुना आपके मनपसंद रेडियो से। और आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं, थैंक यू सो मच राजेश जी आपके मैसेज के लिए। आपने कहा कि अभी कुछ देर पहले मॉर्निंग में वहाँ बारिश हुई थी और बारिश आने से आप खुश हो गए थे और बारिश जल्दी शुरू हो गई, लेकिन अब मेरा शो भी खत्म होने वाला है। लेकिन चिंता मत कीजिए, मेरा शो तो खत्म होने वाला है लेकिन शायद बारिश फिर से आ जाए जो आपको खुशी दे। और आजकल ये बारिश हमें खुशी दे रही है, क्योंकि गर्मी के बाद जब बारिश होती है तो उसका मजा कुछ अलग ही होता है। सो थैंक यू, स्वागत है आपका इस शो में। आप सुबह से मुझे सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा ही साथ देते हैं। इसके अलावा मुझे आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं, थ्री वर्स गेम चल रहा है और बहुत सारे साथियों ने सही पहचान लिया है गीत को, कुछ एकाध को छोड़कर। लेकिन कोई बात नहीं, गाना कौन सा है मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले एक खास इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। और आपको बता दें कि ये खबर जो है वो माता पिता के लिए है एक महत्वपूर्ण सूचना। आपके बच्चे को जीवन की सबसे अच्छी शुरुआत देने के लिए ये सुनिश्चित करें कि उसके सभी बचपन के टीके यानी कि वैक्सीनेशन समय पर लग चुके हों। टीके जो हैं वो आपके बच्चे को खसरा और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से बचाते हैं जो हमारे समुदायों में आसानी से फैल सकती है। यदि आपके बच्चे का टीकाकरण नहीं हुआ है तो वो इन बीमारियों से सुरक्षित नहीं है। इंग्लैंड में बचपन के टीके हर वर्ष 5,000 से अधिक लोगों की जान बचाने में मदद करते हैं। और ये जानकर आपको भरोसा होगा कि NHS द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सभी बचपन के टीके दुनिया भर के लाखों बच्चों को सुरक्षित रूप से लगाए जा चुके हैं। समय पर टीके लगवाना सबसे बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन यदि आपके बच्चे का कोई टीका छूट गया है तो भी आप अपने GP से संपर्क करके वो छूटा हुआ टीका पूरा करवा सकते हैं। क्या आपने बच्चे के सभी टीके समय पर लगवाए हैं? अपने बच्चे की रेड बुक में देखें या फिर अपने GP प्रैक्टिस से बात करें। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए nhs.uk/childhoodvaccinations पर आप जा सकते हैं। तो ये तो थी जरूरी जानकारी, और अब शुरू करते हैं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला। सुनवाते हैं आपको पहला गाना मुकेश जी की आवाज में।
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट dairyvalley.net।

0: रंगोली फिल्म से लिया था ये गाना, जिसमें किशोर कुमार खुद थे और साथ में थी ब्यूटीफुल वैजयंती माला। विजय जी, आपको ये गाना डेडिकेट करते हैं और ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना।
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: और आपको याद दिला दें कि भाई अगर हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं तो दुबई हो आइए, अच्छी डील्स चल रही हैं साउथहॉल ट्रेवल पर। उन्हें कॉल कीजिए 0208-574-8410 पर। इट ऑल प्रोटेक्टेड है सब कुछ।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
0: और अब थोड़ी ही देर में सुनवाने वाली हूँ आज के थ्री वर्स गेम वाला गाना, लेकिन उससे पहले बता दूं हमारे किन साथियों ने आज के गाने को बिल्कुल सही सही पहचाना है। तो सबसे पहले जिनका नाम आता है वो है कुकी, आपने बिल्कुल सही बताया है, दामिनी बहन, नरेन पटेल जी, रोशनी, करसन पिंडोरिया, उल्लास, दिव्या जी, हैरो से अर्जुन जी, विजय गुडूरी जी, अयूब चौहान, सहर, गीता हर्षद जोशी, सुरेश पटेल, उषा खोड़ा, तोची, मनीषा शाह, शरफून, संध्या भावसर, महेंद्र बजारिया। आप सबका जवाब बिल्कुल सही है और सुरेश पटेल जी आपके

0: मैसेज से मुझे याद आया कि यस आप हमसे मिलने आए थे और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। इतनी दूर से आप वटवट से हमें बीकानेर वाले शॉप की ओपनिंग में मिलने आए थे, खूब मजा आया आपसे बातें करके, आपसे मिलके, सो थैंक यू। और बस सभी ने जवाब सही दे दिया है तो फिर देर किस बात की है, थोड़ी देर में बजा देती हूँ आज के थ्रीवर्स गेम वाला गाना।
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. Leica Radio.
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: आंसू बन गए फूल, ये था फिल्म का नाम और इसमें म्यूजिक था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और इस फिल्म में काम किया था देव मुखर्जी ने। देव मुखर्जी जो जॉय मुखर्जी के छोटे भाई थे और इन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया है लेकिन इनकी फिल्में ज्यादा चली नहीं और फिर कुछ और फिल्मों में ये विलन भी बनकर आए हैं और साथ में इनकी एक नई हीरोइन थी अलका। गाने अच्छे थे, ये गाना खास तौर पर काफी पॉपुलर है लेकिन फिल्म के बारे में मैं इतना नहीं जानती हूँ। लेकिन ये था हमारे आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना जिसे ज्यादातर साथियों ने सही सही पहचान लिया था।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
0: तोशी जी, आपके फोन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव गांजा, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। जासू जी, थैंक यू साथ देने के लिए। थैंक यू जैस्मीन, थैंक यू भारती जी और बहुत सारे आज ऐसे नाम हैं जो छूट गए हैं लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शो में हमेशा ही पार्टिसिपेट करने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। बस अब क्या, जाने की बेला आ ही गई।
2: ये है Like Her Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 370 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टकास।
2: Like Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Radio.
3: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
0: The gold rate is 97.95 pounds per gram.
3: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116 266 4278.
2: Like a radio.
0: So, Lydia.
3: Like a radio.
0: अगला गाना लेकर चलेगा आपको न्यूज तक और न्यूज के उस पार अनुराग लाइका गोल्ड पर आपका साथ देंगे। लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर आज हमारे एक नए प्रेजेंटर हैं जय, जो एक से चार आपको बढ़िया बढ़िया गाने सुनवाएंगे और लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर होंगी आपके साथ आनंदी एक से चार। और अब मैं ऋतु शर्मा आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ, अगले हफ्ते आपसे मेरी फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच साथ देने के लिए और फिर कहूंगी कि अगर आप इस शो को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लिसन बैक पर जाकर कभी भी इस शो को आप दोबारा सुन सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं सुन पाएंगे, 3-4 घंटे लगते हैं शो को अपलोड होने में, तो उसके बाद आप इसे कभी भी सुन सकते हैं कितनी भी बार। और अगर आप लाइका गोल्ड 2 सुनना चाहते हैं जो कि हमारा ऑनलाइन है जिस रेडियो स्टेशन है जिसमें बैक टू बैक क्लासिक सुनवाए जाते हैं, लाइका रेडियो 90s है जिसमें 90s के गीत आते हैं नॉनस्टॉप और लाइका रेडियो पंजाबी है ऑनलाइन जिसमें आप पंजाबी गीत सुन सकते हैं, तो आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं, जो मर्जी सुनिए। बस अगले हफ्ते तक इंतजार कीजिए क्योंकि मिलूंगी मैं आपसे अगले हफ्ते फिर से। ख्याल रखिए, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।
4: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.
3: This is Leica Radio.
5: List up, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10kg, 7.49. Leela Medium Atta 10kg, just 3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 149, Tata Salt for 69p, Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p and 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 399, Mido Yogurt 10 kg 899, Karela or Long Dudi 299 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Leicester LE1 2JU and 2A Rollout Sale, Leicester LE5 4UN. Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Tanyo, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-396-3557. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
8: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
9: No more worries for me or you.
10: Southall Travel, at all protected.
11: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit Ambala.co.uk.
12: Leicester Miller is back.
11: Get ready for a weekend full of colour, culture, music, food, family fun and live performances.
12: Confirmed artists include Lember Hussein Puri, H-Dami, Roach Killer, Chirag Rao and Shin DCS.
11: Hosted by the team of Leica Radio Network, Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester. An event by 101 Circle in association with Leicester City Council and Arts Council England.
13: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
14: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
13: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
15: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758 580 1801. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
11: LemFi means quicker and safe way to send money.
16: LemFi means low transaction fees and great exchange rates.
11: LemFi means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LIKA.
16: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LemFi. Download the LEMFI mobile app today.
17: LemFi is registered by the FCA. T's and C's apply.
18: This is the Leica Radio Network. Anandi Shah with Weekend Bliss on Leica Radio. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: City Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
2: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
1: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
2: Also explore 2026 cruises
1: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: यू नो दैट क्लीन फ्रेश फीलिंग after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy.
5: Siddhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham.
4: Siddhayu, Ayurved that fits your life.

0: What a beautiful song, very inspiring song. अक्सर रोमांटिक गाने ही प्रोग्राम में शामिल रखती हूँ मैं, लेकिन आज के टॉपिक के साथ जाता था ये गाना, तो इसलिए मैंने इस गीत को चुना. लेकिन सुनने के बाद मैंने ये सोचा कि बहुत अच्छा किया कि ये गीत मैंने इतने सालों बाद प्ले किया. आई थिंक हमारे लाइका गोल्ड पर भी आपने ये गीत मेरा ख्याल 1.5-2 साल बाद सुना है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ, हो सकता है आपने पहले सुना भी हो. फिल्म का नाम था आखिर क्यों. जे ओम प्रकाश साहब ने बनाई थी फिल्म एंड प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्ट बाय हिम. फिल्म में काम किया था राजेश खन्ना ने, स्मिता पाटिल थी, राकेश रोशन थे एंड टीना मुनीम. और राजेश रोशन जी का संगीत था, गाने बहुत खूबसूरत सभी के सभी. स्पेशली दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, इस फिल्म का गीत बड़ा पॉपुलर हुआ, जिसमें लता जी का साथ दिया था अमित कुमार ने. देन एक अंधेरा, ये वाला गीत बहुत बहुत पसंद किया गया था, एंड उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इन्जॉय किया. और आज के प्रोग्राम का आगाज़ हुआ जान तेरे नाम, इस फिल्म के एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ. दीपक बजाज विज ने इसे डायरेक्ट किया था, और फिल्म में रौनित रॉय हीरो थे और फरहीन थी हीरोइन. नदीम श्रवण का संगीत था. उम्मीद करती हूँ गीत आपने पसंद किया, एंड इस गीत को सुनते ही जल्दी से चली आएँ हमारी मिसेस शेख, और कहती हैं सरिता मेरा फेवरेट गाना है. थैंक यू जी. एंड विजय गुनोवा जी, बड़े होशियार हैं आप, एकदम आपने पहचान लिया कि क्या कॉमन है आज के गीतों में. एंड आपने कहा मोहम्मद अजीज की वॉइस सुनकर बहुत अच्छा लगा, एंड बहुत रफ़ी साहब की आवाज़ से बहुत मिलती उनकी आवाज़. बिल्कुल ठीक कहा आपने. और जितने भी साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं उन सबका थैंक्स करना चाहूँगी. ज़रा आपसे पूछ लूँ, कैसे हैं? ठीक तो है ना? जहाँ भी रहें खुश रहें, खैरियत से रहें, ज़िंदगी को इंजॉय करते रहें. ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी. अगर किसी कारणवश आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, ठीक रहें, सेहतमंद रहें और ज़िंदगी को इंजॉय करते रहें. और ज़िंदगी को इंजॉय इंसान तभी कर सकता है अगर उसकी सेहत अच्छी है. अगर सेहत अच्छी है, हेल्थ अच्छी है, तो सब कुछ अच्छा लगता है. और इस गीत में एक लाइन थी बहुत प्यारी कि सुख का मतलब तभी समझ आता है अगर दुख होता है. अगर दुख आते हैं तो उसके बाद सुख मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है. तो थैंक यू सो मच कि आपने ऑलरेडी उस गीत को बहुत अप्रिशिएट कर दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ. आज भी किसी ना किसी का तो बर्थडे होगा ना, तो मना लेंगे. आपका बर्थडे मनाते हैं ना? इज इट योर बर्थडे? अगर है तो मुझे जल्दी से मैसेज करके बता दीजिए आपका बर्थडे, या आपके परिवार में किसी का, आपके दोस्तों के सर्कल, फ्रेंड सर्कल में किसी का बर्थडे, किसको विश करना चाहते हैं, तो जल्दी से अपना मैसेज मुझ तक पहुँचा दीजिएगा. और आइए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, भाई, अगर आप इंडिया पैसे भेजना चाहते हैं SBI UK के जरिए, तो बहुत काम आसान है. You can go to the branch online और SBI Yono mobile app के जरिए आप पैसे भेज सकते हैं. आज 1 ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 128 रुपीस एंड 30 पैसास, एंड टर्म्स एंड conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: भी हमारे विजय गनोवा जी को तो पता चल गया क्या कॉमन है आज के गीतों में, कौन सा वर्ड दोनों गीतों में आपने सुना. अगर आपको भी पता चल चुका है और आपका कोई पसंदीदा गीत है, तो मुझे लिखकर जल्दी से भेज दीजिए. हो सकता है कि मैं अपनी प्लेलिस्ट को चेंज कर दूं आपकी पसंद के मुताबिक, है ना? तो जल्दी कीजिएगा.
2: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets book kare demontforthall.co.uk
3: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: 1968 में आई थी ये फिल्म, 31st of December 1958 को रिलीज हुई. डायरेक्टेड बाय मनमोहन देसाई एंड इस फिल्म में काम किया था विश्वजीत, बबीता एंड हेलन ने. और संगीत तो दूर से पहचाना जाता है ओपी नैयर साहब का. एंड द फिल्म हैज़ बीन रियली रियली मीन्स ज़्यादा जो चली थी ये फिल्म म्यूजिक की वजह से चली थी, ओपी नैयर साहब का संगीत, which included three songs that became very very popular. जानते हैं कौन से वो तीन गाने थे जो मैंने प्ले किया, वो पसंद किया गया लेकिन इतना पॉपुलर नहीं हुआ था. So I would say that was a rare hit. And जो तीन गाने इस फिल्म के बड़े मशहूर हुए थे वो थे आओ हजूर तुमको सितारों में ले चलूं, एंड दूसरा गीत था कजरा मोहब्बत वाला, एंड देन आँखों में कयामत के जलवे, वो समथिंग लाइक दैट. विश्वजीत वॉज वन ऑफ द फर्स्ट लीडिंग एक्टर इन बॉलीवुड टू क्रॉस ड्रेस एज ए वुमन ऑन स्क्रीन फॉर द सॉन्ग कजरा मोहब्बत वाला. वैसे तो बहुत से मेल जो आर्टिस्ट हैं, सितारे हैं, उन्होंने फीमेल ड्रेसेस पहनी है फिल्मों में नाउ एंड देन, लेकिन विश्वजीत पहले थे जिन्होंने बॉलीवुड में पहले लीडिंग आर्टिस्ट थे जिन्होंने क्रॉस ड्रेस पहना था एज ए वुमन. और इस फिल्म की एक बात है कि कजरा मोहब्बत वाला, दिस फिल्म वाज द लास्ट कोलैबोरेशन बिटवीन सिंगर शमशाद बेगम एंड म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर. ओपी नैयर साहब के लिए शमशाद बेगम ने बहुत से गीत गाए, लेकिन जब आशा जी सीन में आ गई तो आशा जी से ओपी नैयर साहब ने बहुत गीत गवाए, तो उस वक्त शमशाद जी थोड़ा सा उनसे नाराज़ भी हो गई थी कि आप आशा को ज़्यादा गीत देते हैं मुझे कम. पर ये जो गाना था ये लास्ट गाना था जो शमशाद बेगम ने गाया था विद आशा भोसले इन ओपी नैयर सब म्यूज़िक डायरेक्शन. सो इसके बाद उनके लिए शमशाद बेगम ने कोई गीत नहीं गाया था. ये था किस्मत का गीत और किस्मत के सभी गाने बड़े मशहूर हुए. आपके मैसेजेस आते जा रहे हैं, अपनी अपनी फरमाइशें भी मुझ तक भेजते रहिएगा. बता दूं कि ये किस्मत का गीत आप तक पहुंचाया किसने.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodle.

0: ये गीत मैं कर देती हूँ आप सबके नाम, महेंद्र बजारिया जी थैंक यू, एंड निर्मल एंड कीरत जी, संध्या भाव सर, अरुणा जी एंड ज्योति गिरी शाह, विनी विनोद, वरुण वत्सला जी, विजय गद्रुई एंड मनु जी, भारती जी, संतोष जी, अर्जुन जी, आप सभी का तह दिल से शुक्रिया अदा। और सहर एंड जगतार जी इन वैंकूवर सुन रहे हैं, महेंद्र पटेल जी इन क्रॉयडन, मनु माधवानी थैंक यू सो मच, एंड सलमा इन मेडस्टोन, हना एंड थोची जी, आप सब के लिए मैंने प्ले किया ये वाला गीत जिसे आप तक पहुंचाया था किसने।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
2: Like a radio. Sarita Sabharwal with your weekend classics.
3: Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
4: ये है
5: Leica Radio
6: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
7: मैं निकला ओ गति लेके आए हूं मेरे।
6: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है 39,500।

0: लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में, लेकिन वो बात क्या कहाँ पर है जो तुम में है। फिर वही दिल आया हूँ इस फिल्म से, चुना था मैंने इस गीत को। और ओपी नैयर साहब का संगीत दूर से पहचाना जाता है, नासिर हुसैन साहब की फिल्म थी और फिल्म में जॉय मुखर्जी एंड आशा पारिक ने काम किया था।
1: This is Leica Radio.
2: List up, stock up and save at Falcon Cash and Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg $7.49. Leila Medium Atta 10 kg just $3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg $24.99. Hira Butter Ghee 2 kg $10.99. And Falcon Paneer Box $8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for $1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for $3.99. Mido Yogurt 10 kg $8.99. Karela or Long Dudi $2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash and Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE12JU, and 2A Rollout Hill, Leicester, LE54UN.
3: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
4: Leicester Miller is back. And the state.

कल्याण जी आनंद जी का संगीत हरियाली और रास्ता फिल्म से चुना था मैंने इस गीत को, और इस गीत की फरमाइश मुझे किसी ने लिख कर भेजी, आई एम सो सॉरी कि इतने सारे मैसेजेस में आपका मैसेज गुम हो गया। लेकिन आइए बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के अगले गीत की तरफ। मैनचेस्टर, दिस इज द लाइक रेडियो नेटवर्क, और ये गीत मुझे उम्मीद है कि आप सभी इंजॉय करेंगे, बहुत प्यारा गीत है। एंड इस गीत में आशा जी की आवाज़ है एंड फिल्म का नाम था जॉनी मेरा नाम। तो आपने ये फिल्म देखी है ज़रूर और इंजॉय भी की हुई है। हेमा मालिनी थी इस फिल्म की हीरोइन, देवानंद थे हीरो, जॉनी मेरा नाम। यस, ये गीत हमें न्यूज तक पहुंचाएगा, न्यूज के उस पार मैं सरिता आप ही के साथ हूँ, मेरा साथ देते रहें। ऑफ कोर्स लाखों या लाख वाज़ द कॉमन वर्ड इन दिस आवर।

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने। पहला गीत मैंने चुना था आ अब लौट चले फिल्म से, 1999 की फिल्म थी, एंड ये दूसरा गीत 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया से चुना गया था। ये भाग्यश्री पर पिक्चराइज हुआ था और पहला गीत ऐश्वर्या राय, विनोद खन्ना जी के बेटे अक्षय खन्ना और सुमन रंगनाथन पर पिक्चराइज हुआ था। सुमन रंगनाथन इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे, उन्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। उन्होंने वेल शी इज अ मॉडल एंड एक्ट्रेस, उन्होंने बहुत सी कन्नड़, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम फिल्मों में काम किया। हिंदी फिल्मों में उनका आना हुआ था, जिस फिल्म से वो थी 1996 में आई थी फिल्म, जिसका नाम था फरेब, और उसके गाने बड़े अच्छे थे फरेब के, लेकिन फिर दो गाने 90s के हो जाने थे इसलिए मैंने दूसरा गीत चेंज किया। एंड आ अब लौट चले में उन्होंने काम किया, बागबाँ में थी, एंड इसके अलावा एक स्त्री उसमें भी उन्होंने काम किया था। तो आज हमारी तरफ से उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं, एंड अगर आपका भी बर्थडे है तो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपकी ज़िंदगी में ऐसे दिन बार बार आए, हज़ार बार आए, आप खुशियाँ मनाते रहें, खुशियों को बांटते रहें और खुशियाँ बटोरते भी रहें। तो अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और ये इंफॉर्मेशन भी पहुंचा दें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: जी हाँ, आप एक्सचेंज कर सकते हैं पैसे जाके ब्रांच में, ऑनलाइन या SBI Yono मोबाइल ऐप अगर डाउनलोड किया तो उसके जरिए। TNC applies and आज आपको 1 ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले मिलेंगे 128 रुपीस एंड 30 पैसास।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is Sarita Sabharwal on Leica Radio. Leica Radio.
2: List up, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10kg, 7.49. Leela Medium Atta 10kg, just 3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5kg for 3.99. Mido Yogurt 10kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE12JU and 2A Rollout Hill, Leicester, LE54UN.
3: Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Jobs today.
4: Citybond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
5: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
4: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
5: Also explore 2026 cruises
4: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
6: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
7: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
8: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London soon.
9: Birmingham Hodge Hill, this is not a drill. Pepe's is now open at 606 to 608 Bromford Lane. Get your chicken rice, chicken XL, flame grilled wings, strips, burgers, burritos and banging salads, all packed with Pepperlicious flavour. Birmingham, come and get it.
10: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
8: Leicester Miller is back.
11: And the state.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: भई तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो आप जानते हैं, मैं बार बार कहती हूँ और फिर अनाउंस भी होता है कि यू आर लिसनिंग टू सरिता सबरवाल. अपना नाम बताइए, मुझे मैसेजेस भेज कर बता सकते हैं कि कौन है आप, कहाँ बैठे आप इन गीतों को एंजॉय करें, इस प्रोग्राम को एंजॉय करें. वैसे ढेर सारे मैसेजेस आपके मुझे मिल चुके हैं. रीटा, आपने मुझे पहली दफ़ा लिखा है शायद, एंड रीटा कैंट में रहती हैं और कहती हैं कि बहुत अच्छे लगते हैं सभी के सभी गाने भी, और एक गाने की फरमाइश की है लेकिन वो गीत कल ही हमारे यहाँ से प्ले हुआ, सो आज के प्रोग्राम में मैं शामिल नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आने वाले दिनों में ज़रूर आपकी पहचान, आपकी पसंद भी पूरा करने की कोशिश रहेगी. करसान पिंडोरिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. सलमा जी, भारती जी, जैस्मिन जैंतन, मीना जी, अर्जुन जी, ज्योति गिरीशा, अरुणा जी, निर्मल एंड कैंट में हैं, आप भी सुन रहे हैं, सभी का बहुत बहुत थैंक यू.
0: सरिता सबरवाल विद द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन लाइका रेडियो.

0: और अब सरिता आपको ये बताने जा रही है कि लाइक रेडियो नेटवर्क टीम अप विद सिफत इवेंट्स एंड सोलिजैम लंदन फॉर अ नाइट ऑफ डिवाइन सोलफुल म्यूजिक विद प्रिंस ऑफ गजल्स रंजीत राजवाड़ा एंड इट टेक्स प्लेस एट हेरुल आर्ट सेंटर ऑन थर्सडे 30th जुलाई एट 7 PM सेंड इन द वर्ड गजल फॉर You to be and to win. Yes, अगर आप विन करना चाहते हैं तो जल्दी से मुझे ये शब्द लिखकर भेज दीजिए गजल GHAZAL गजल एंड इफ यू डोंट विन डोंट वरी यू कैन परचेज टिकट्स फ्रॉम heroarts.com से एंड टिकट्स आर प्राइस फ्रॉम £25 यूज द कोड लाइक अ रेडियो टू गेट 10% ऑफ योर टिकट्स ऑनलाइन विनर्स टिकट विल बी ईमेल्ड अक्रॉस सो प्लीज प्रोवाइड वैलिड ईमेल ID, terms and conditions apply. और तभी आप हिस्सा लीजिए अगर आप जा सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं इस शो में तो फिर आप मुझे जल्दी से मैसेज लिख भेजिए गजल और अगर नहीं जा पाए तो प्लीज़ अपना नाम एंटर भी मत कीजिएगा सो जल्दी से वर्ड लिखिए गजल एंड दैट विल बी योर एंट्री टू द कॉम्पिटिशन
1: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. Sarita Sabharwal with the biggest classics on Leica Radio.
2: Bola jaye phoolon ka shabab usme phir

0: वाह वाह, एवरग्रीन गाने हैं ये, कभी पुराने नहीं होंगे। जब जब सुनेंगे हम इन गीतों को, तब तब इनके साथ गुनगुनाएंगे। लता जी एंड किशोरदा की आवाज़ें, प्रेम पुजारी से चुना था इस गीत को, एस टी बर्मन साहब का संगीत। होप यू एंजॉयड द सॉन्ग। थैंक यू एवर सो मच आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए, एनकरेजिंग मैसेजेस के लिए। और आपने मुझे लिखा है प्रथा जी कि आसरीता थोड़े गाने डिफरेंट हैं लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है। थैंक यू, ये जानकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ इस आवर में कोई थीम नहीं है ना इसलिए, और किसी का ऐसे बर्थडे भी नहीं है, तो फिर इसलिए मैंने कहा चलिए आज खिचड़ी बनाते हैं। तो कभी कभी खिचड़ी भी खानी चाहिए ना, अच्छी लगती है। आप इंजॉय करें, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। राइट भी, अब जरा ये काम भी हो जाए।
1: Like Extra Podcast Updates.
0: राइट, और पॉडकास्ट एपिसोड 28 एंड री इन्वेंशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। दीप राजा स्पीक टू मीनल सांबरे फ्रॉम समारिया ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड एज इनसाइट इनटू द बैंकिंग सेक्टर। और अगर आपने अभी तक लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट के कोई भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो जल्दी से देखिएगा। दैट्स अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजॉन, एप्पल एंड other major streaming platforms.
1: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
2: ये है
1: Leica Radio.
2: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है 39,500 पाउंड, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार सीपीडी सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
3: लंदन, आर यू ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
4: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiya.
3: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Pando tale on its head and give it an exciting Desi twist.
6: Be sure to catch the show across the Midlands. The Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July. And at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October.
5: Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.

0: listening. Leica Radio is now available across Coventry on DAB.
1: राइट भाई, बहुत सारे मेरे साथियों ने हिस्सा लिया है कॉम्पिटिशन में एंड वो जाना चाहते हैं इस इवेंट में जो हो रहा है 30 जुलाई को 7 PM थर्सडे है उस दिन हैरो आर्ट्स सेंटर में. एंड बहुत अच्छे कलाकार हैं गज़ल आर्टिस्ट रंजीत रजवाड़ा और उनको देखने के लिए जा रही हैं कौन, नाम अभी लूँ या नेक्स्ट आवर में? थोड़ा सा और सस्पेंस आप तक रखती हूँ. और ये गीत हमें पहुंचा देगा न्यूज तक. न्यूज के उस पार मैं सरिता फिर से आप ही के साथ हूँ टिल 7 o'clock. 7 बजे से लेकर 10 बजे तक विंटेज गोल्ड में आपका साथ निभाते हैं सैंडी शाह, उनका साथ दीजिएगा. पर मैं अभी यही हूँ टिल 7. तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर एंड मनहर उदास जी की आवाज़ें फ्रॉम द फिल्म अभिमान.

0: वाह जी वाह, वाह जी वाह। इसे कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू की मेरी तरफ देखो और कहीं नहीं देख सकते। उम्मीद के जो गीत आपने पसंद किया, मैंने एक्चुअली ये गीत सोचा था वो वाला है, सारे शहर में आप सा कोई नहीं, वो वाला गीत, लेकिन दिस वाज नाइस एज वेल। आशा भोसले एंड लता जी की आवाजें आपने सुनी फ्रॉम द फिल्म अली बाबा और 40 चोर, 1980s की फिल्म थी और उम्मीद करती हूँ आपने पसंद की। इस दौरान बहुत सारे मैसेजेस भी आए हैं, थैंक यू सो मच। और आज के प्रोग्राम के लास्ट आवर का पहला गाना एक बार फिर से सुमन रंगनाथन, जो आज अपना बर्थडे मना रही हैं, उनकी फिल्म फरेब से चुना था मैंने इस गीत को। 1996 में आई थी ये फिल्म और इस फिल्म को किसने बनाया था भी, विक्रम भट्ट जी ने बनाया था इस फिल्म को। फिल्म के गाने बड़े खूबसूरत थे, एक तो ये जो मैंने प्ले किया और दूसरा था ये तेरी आंखें झुकी झुकी, जतिन ललित का संगीत था, वो भी नए नए थे तब, तो जतिन ललित का संगीत था। एंड व्हेनेवर आई स्पोक टू जतिन जी और ललित जी तो मैंने ये, एंड ऑल्सो अभिजीत के साथ भी जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि ये गाना इतना छोटा है, इसके दो तीन स्टैंजास तो और होने चाहिए थे, पर कहते हैं कि अच्छी चीज़ें जो है छोटे पैकेट्स में ही आती है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। तो दोनों गाने बहुत खूबसूरत हैं, ओ हम सफ़र वाला गाना भी अच्छा है इस फिल्म का, तो आने वाले दिनों में वो गीत भी शामिल ज़रूर करूँगी। सो गुरमीत सिंह बच्चू जी, थैंक यू आपका भी, पर मुझे पता नहीं चल रहा कि आप किस कंट्री में बैठे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और आप कौन हैं। आपने लिखा है कि वेरी नाइस सॉन्ग्स, बहुत मज़ा आ रहा है, तो कौन है आप, अपना नाम भी लिखा करें। ओह सोनी रावल जी, ओके आपका नाम नहीं आया था। विमल रायन जी, थैंक यू आपका भी। इरम आप जुड़ी हैं हमारे साथ, करसान पिंडोरिया, विजय गुद्राई, साधना भापसर एंड जहीर खान साहब कराची में सुन रहे हैं प्रोग्राम, महेंद्र पटेल क्रॉयडन में सुन रहे हैं। आप कहाँ बैठे सुन रहे हैं आप बताना चाहें तो बता दीजिएगा। जिन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लिया बेताबी से इंतजार होगी आपको भी प्रथा की, मैं किसका नाम लेने वाली हूँ। फरीदा गुलाम अली जी, थैंक यू आपका भी। और ये कौन है, अपना नाम लिखा करें। बेंसूरा, थैंक यू आपका भी बहुत बहुत। अमरजीत जी, थैंक यू। एंड भारती जी, भारती डी डी, अनदर भारती, महेंद्र बरजारिया जी, सबका मैं थैंक्स करना, रानी ऑफ स्लाव एंड विजय गनोवा जी, इंतशाब, सलमा जी, मिसी शेख, तोची जी, जहाँ भी बैठे, जैस्मिन, जहाँ भी इंजॉय करें, थैंक यू सो मच कि आप अपना वक्त, कीमती वक्त मुझे देते हैं और प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, बता देते हैं कि कहाँ बैठे हुए सुन रहे हैं। ओके, एंड अब कंपटीशन में जिन्होंने हिस्सा लिया है उन सबका थैंक्स करते हुए ज़रा नाम भी अनाउंस कर दूं कि कौन है विनर। वेल, मेरे कंप्यूटर जी ने चुना है संध्या भावसर जी को। संध्या जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आपको ईमेल कर दी जाएंगी टिकट्स और ईमेल आईडी आपने मुझे लिखकर भेज दी है, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और अगर आप टिकट्स खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद भी सकते हैं टिकट्स, एंड टिकट्स आर अवेलेबल। और साथ में ये भी बता दूं कि टिकट्स आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, आप लेना चाहें तो आर्ट सेंटर्स है, हेरो आर्ट सेंटर से ले सकते हैं। लेट मी जस्ट टेल यू अगेन, इट्स टेकिंग प्लेस ऑन इन हेरो आर्ट सेंटर ऑन थर्सडे 30th जुलाई को एट 7 PM एंड टिकट्स आर अवेलेबल। आपने कहाँ से लेनी है टिकट्स, विनर्स विल बी हेरो आर्ट सेंटर, heroarts.com पर भी जाएंगे तो टिकट्स वहाँ से भी मिलेंगी। एंड इफ़ यू डोंट विन, डोंट वरी, यू परचेज टिकट्स फ्रॉम heroarts.com से। टिकट्स आर प्राइज फ्रॉम £25 एंड यूज द कोड Like a radio to get 10% off your tickets online. So देर मत कीजिएगा, जल्दी से टिकटें खरीद लें। एंड मैंने इनकी आवाज़ सुनी है, बहुत अच्छे गायक हैं, रंजीत राजवाड़ा, तो ज़रूर जाइएगा। एंड साधना, संध्या जी, आपको बहुत बहुत मुबारक।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भाई अगर आप इनके जरिए पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी, तो डोंट फॉरगेट, यू कैन एक्सचेंज द मनी, यू कैन गो इन टू द ब्रांच, ऑनलाइन कर सकते हैं, SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए कर सकते हैं। और आज आपको मिलेंगे कितने पैसे, एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले 128 ₹28.30 आपको मिल सकते हैं. इट डिपेंड्स कि कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: अब हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं हेमा मालिनी जी और उनकी फिल्म अमीर गरीब से मैंने नेक्स्ट गाना चुना है. अमीर गरीब इसलिए चुना है क्योंकि ये फिल्म आज ही के दिन इन 1974 में रिलीज हुई थी. आप सोचते रहे कौन सा गीत हो सकता है, किशोरदा एंड लता जी का गाया हुआ कौन सा गीत हो सकता है अमीर गरीब का जो मैंने क्यों कर रखा है. आप सोचते रहें, मुझे लिखकर भेजना चाहें तो लिखकर भी भेज दीजिए. Meanwhile, I'm going to play these messages.
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Sarita Sabharwal on Leica Radio. Leica Radio.
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.

0: किशोर दयान लता जी की आवाजों में गाया हुआ गीत अमीर गरीब फिल्म से मैंने चुना था। ये फिल्म आज ही के दिन रिलीज हुई थी, 26 जुलाई 1974। मोहन कुमार जी ने इसे डायरेक्ट किया था, फिल्म में काम किया था देवानंद एंड हेमा मालिनी ने, एंड संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आई होप यू लाइक द सॉन्ग। और अब डेरी वैली वाला गाना भी बहुत अच्छा है, जरा सुनते हैं।
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: मोहम्मद रफी साहब एंड सुमन कल्याणपुर की आवाजें फ्रॉम द फिल्म तुमसा नहीं देखा, 1957 आई थी। ऐसे गीत तो विंटेज गोल्ड में होते हैं। आ रहे हैं संजीशा।

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Ye hai Laika Radio. Laika
2: और इस वक्त साथ दे रहे हैं आप अपनी प्रेजेंटर सरिता सबरवाल का और मैं आपको याद दिला दूं लाइका रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ दिवाली स्टोरी द म्यूजिकल दैट सोल्ड आउट द रॉयल अल्बर्ट हॉल एंड नाउ अराइव्स एट ओवो Wembley Arena on Sunday, 27 September. A student pre-show takes place from 5 p.m. to 5:45 p.m. and the main event will be at 6:15 till 9:30 p.m. Created by Sanatan Events founder Nitin Palan, MBE, and featuring choreography from the Bollywood Dance School team, the English language production brings the Ramayana to the life with four chapters, a bespoke seven songs soundtracks and full international cast. Tickets are available from diwalistory.com se. Aaj unki launch thi and Swami Narayan Mandir Neasden mein hum wahan pahunche aur bahut acha laga सारी टीम से मिलकर भी आप जरूर जाइएगा और बच्चों को यंगस्टर्स को जरूर लेके जाइए
0: Get your products advertised across the largest Asian radio network. We are Laika Radio. Email sales at laikamedia.co.uk.
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
2: एक और गाना मेरे मनपसंद का आपको भी पसंद आएगा अनुभाई न्यू जर्सी न्यूयॉर्क में प्रोग्राम सुन रहे हैं आपका भी धन्यवाद दिनेश पोपट जी थैंक यू आपका भी निर्मल एंड किरत थैंक यू

लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो डॉट कॉम ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी ये है लाइका।

0: experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwada.
1: Nazar se nazar.
0: Performing live in Birmingham on Friday, 31st July at Albury, Birmingham. Book your tickets now on eventbrite.com. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets just £25, including a three-course meal. The exclusive radio partner, Laika Radio Network.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
3: साउथ हॉल ट्रेवल, or protected.
4: Laika Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
5: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it, you just start

0: to Leica Gold 2 on Leica Radio mobile app, LeicaRadio.com and Alexa. Play Leica Gold 2.
1: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी।
2: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
1: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया।
2: दिल तो टूट पे गया,
1: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
3: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
1: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394।
0: The sounds of love across the Midlands. The love sound. This is Leica Radio.

0: Breaker Radio.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस

0: इस बेहद कम साउथ ऑल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे'ल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ ऑल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथ ऑल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
1: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है।
2: ऑर्डर ऑनलाइन एट pujasweets.com। फ्रॉम बर्फी, लड्डू, गुलाब जामुन टू समोसा एंड गाठिया, फ्रॉम केटरिंग स्टार्टर्स टू डिजर्ट, पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज।
3: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 और विजिट मेल्टन रोड LE4 5EA।
2: पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज।
4: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग अक्रॉस द UK। लाइका रेडियो, बॉलीवुड रोमांटिक हिट्स थ्रू आउट द नाइट। दिस इज द लव साउंड।